प्यार का ड्यूएट गाते गाते जब हीरो हीरोइन ऐसे लॉन्ग शॉट में चलने लगे तो समझ लीजिए लव स्टोरी खत्म, दी एंड, और जिंदगी का पहला चैप्टर शुरू, सगाई।

0: असौ साल त ढुक्क नारे बल्ली
1: हा त पोर्सालिक बास सम्झोट आम्मिन्दो लक्ती रहट बरा पानी बस्त बेर अस्ट छिमसाम कहाँ र सिक्जाएट सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
0: हा त धन्न ब्यालम लट्ठी ठिक्कम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारे बट्टी
1: हा हो बदा
2: बर्खक ब्यालम बह्य ध्यार जोखिम रहत उह मार बह्या से बचकला पहिले हा सावधानी अपनाए लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण कर सूची बनाई एकचोट्य प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुई लगोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज

0: लगा नहीं क्या लगा नहीं कोई
1: ये राहुल तो यहाँ नहीं है
0: अरे बाबू भी क्या पर नहीं है दो मिनट बाद उसकी हिस्सा होने वाली है यार कहाँ है वो चलो ढूंढो कभी
1: ओह गॉड मैं अभी आया
0: सुधी सुधी राहुल मिला क्या
2: नहीं मिला

0: सर हेमराज आचार्य, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98482974.
1: जीत पुरवाली, यह साल तुम निश्चिंत हुई गवा गए?
2: हाँ, तब पतलिया याद करो तो जू डराए लागा था। पानी जब बरसत रहा तब इतना आनंद से कहाँ बैठे मिलत रहा। सोचो तब नदी किनारे के घर पानी पड़े लागे कि जू घबराए लागत रहा।
1: हाँ तो भले सही समय पर नदी के किनारे से सुरक्षित जगह पर चल गवा।
3: बरसात के मौसम में बाढ़ के खतरा ज्यादा होत है, यही नाते बाढ़ से बचे खरती पहले से तैयारी और सावधानी अपनावा जाए। नदी नारा में पानी अगर बढ़ा है तो सतर्क हो जावा जाए। एम्बुलेंस, सुरक्षा निकाय, स्वयं सेविका सबके संपर्क करे, सूची तैयार पारा जाए। एकाएक जरूरत पड़े वाला सर सामान के झोला तैयार रखा जाए। सतवे बरसात के समय में रोग लागे जोखिम ज्यादा हो नाते पानी उबाल के पिया जाए, सर सफाई में ध्यान दिया जाए।
4: प्लान इंटरनेशनल नेपाल और भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप बांके के साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहा विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता और सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के खातिर जारी संदेश।
5: रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ट्ज नामै काफी छ।

हम हंसते हैं तो उन्हें लगता है कि हमें आदत है मुस्कुराने की, पर वो नादान इतना भी नहीं समझते। ये अता है

0: सबको सोन सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, लाओ मैं बनाता हूँ मिठाई।